सोचिए आप देश के किसी कोने में हैं, एक दुकान के सामने से जा रहे हैं जहां कुछ गुंडे एक 70 साल के बुजुर्ग को परेशान कर रहे हैं। दुकान के नाम को लेकर उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, खड़े होकर वहां फ्री में तमाशा देखोगे, अपने आप से कहोगे सब चंगा सी। ऑप्शन बी, चुपचाप पतली गली से निकल लोगे, घर पहुंचकर फैमिली से बोलोगे क्या जमाना आ गया है। ऑप्शन थ्री, वारदात की वीडियो बनाओगे, पोस्ट करोगे, कमेंट्स में आउटरेज करोगे। और ऑप्शन डी, खुद ही भीड़ में घुस के गुंडों का सामना करोगे, 70 वर्षीय बुजुर्ग की मदद करोगे। अब आप पब्लिक पोल कर लो, फोन अ फ्रेंड कर लो, उसके बिना भी यह बात तो साफ है कि 99.9% लोग ऑप्शन ए बी या सी चूज करेंगे। यह बात हमारे देश के नेताओं को, आतंकी संगठनों को भी अच्छे से मालूम है, इसीलिए वो खुले में शौच करते हैं और जो सभ्य समाज के लोग होते हैं अपना मुंह ढककर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। आप इसे बुजदली कह लो या सिस्टम में विश्वास ना होना कह लो, लेकिन हमें मालूम होता है सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज उठाने से हम डरते हैं। शायद मैं भी डरता हूं।